आठ नौ लाख से ज्यादा जो नेपाल है सा नेपाल है ज्यादा जो चीनी नस्वना दिला अलग जीवना खराश मिला ज्यादा सा आज ही बुखार देते ना दक्कले रह पांगो बुखार खा क्या ना डे कनाडा या टोरंटो ए ग्रीष्मकालीन नेपाल वासा प्रशिक्षण कोचागु बारे बुख कनाडा या टोरंटो ए ज्ञानचंगु ग्रीष्मकालीन नेपाल वासा प्रशिक्षण ज्याझो टोरंटो नेपाल वासा समर स्कूल कोचागु दु जुन 15 तारिख निसे निहागु उगु ज्याझो जुन 27 शनिबार कोचागु ख बुख चाहिँ जी आज जुलाई ले तैछ ना पियको खुशी निहागु प्रशिक्षणले नेपाल कनाडा लिसे अमेरिका आयरल्यान्ड इटली जर्मनी जापान फ्रान्स बेलायत हंगेरी भारत याना मुक ने नेमेसिनो बोधिका प्रशिक्षणले नेवा नेपा व नेवाते बारे रुचितै पि भूमि अध्येता अनुसन्धाता प्राध्यापक ते सम्पतिकागु ख नोपी प्रशिक्षणार्थी ते नीति आधुनिक नेपाल भाषा निगो इकाई पुलाङ्गो नेपाल भाषा नोपी प्रशिक्षणार्थी नीति पुलाङ्गो नेपाल भाषा उच्च अध्ययन कक्षा आधुनिक नेपाल भाषा नोपी प्रशिक्षणार्थी ते नीति व आधुनिक नेपाल भाषा साहित्य उच्च कक्षा व नोपी प्रशिक्षणार्थी ते नीति आधुनिक व्याकरण या प्रश्न बिगु ख खुनुतका निच्छी यंक वंकेको ज्याझुगु ग्रीष्मकालीन नेपाल भाषा प्रशिक्षणले टोरन्टो विश्वविद्यालय प्रोफेसर डाक्टर क्रिस्टोफर एमरिच डाक्टर बालगोपाल श्रेष्ठ श्रीलक्ष्मी श्रेष्ठ गीता मानन्दर व डाक्टर इयान टर्नर कक्षा कयदिगु ख नेपाल भाषा प्रशिक्षण बाहेक ज्याझो कथ जुन 25 से प्राध्यापक निर्मल मान दुलाधर नेपाल भाषा या सन्दर्भे भाषा या राजनीति विषय छ नेपाल भाषा नोचु तयादिगु खसा जुन 27 खुनो हार्वर्ड विश्वविद्यालय या पोस्ट डाक्टर फेलो डाक्टर लुवेन लिउ छगु चैतेया जीवन लिपाङ्गु मल्लकालिया नेपाले निर्माण मर्मत व संरक्षण विशेष अंग्रेजी नोचु तयादिगु ख थगु नोचु तयादिसे डाक्टर तुलाधर लिच्छवी कालिया संस्कृत अभिलेखे लुयावगु थाया बात या ना त नेपाल भाषा नेथना तगु ख खनादिसे थ्यो मत 1500 द निहनिसे नेपाल भाषा जनभाषा कथ बोलीचालिया भ्याजुया वयाचंगु खन खनादिल मल्लकाले सुरुनिसी राजकीय संरक्षण प्राप्त जुयाचंगु नेपाल भाषा आपाला अभिलेख ऐतिहासिक अभिलेखीकरण सृजनात्मक लेखने पुलाङ्गो नेपाल भाषा या साहित्य योगको विधा चकना वंगु तर पृथ्वी नारायण शाह सोनिग त्याके ढुङ्गा व अनलिपा राणा कालिया राज्य थोहे भाषा या त कोतिले गुजाइयागुले नेपाल भाषा लिउनेला वंगु ख वेकल कुलादिल डाक्टर टर्नर सहजीकरण यागु थुगु सत्रे जुगु नेसलि सया इले डाक्टर तुलाधर ये महानगरपालिका स्थानीय पाठ्यक्रम या रुपे विकासना नेपाल भाषा अनिवार्य बंकेगु यागुली थुकिया महत्व अझ अपया वंगु दासि थप पिनिगु भाय नीति नेवातेस अझ आपाल ज्या या मानिगु ख कनादिल डाक्टर लिउ मल्लकालिया लिपाङ्गु इले सुना चैते देखल मर्मत या त लिसे थुपे स्मारक व सम्पदा संरक्षण गु कथ जुल धैगु बारे थिथि लोह पव्या दसिया त बकया थगु नोचु तया दिगु ख थगु नोचुया झोले वेकल किफुया चिल चुए चंगु चैते लिक्क चंगु लोह पौतेगु अध्ययन झोले दुईका दिगु तथ्य त विश्लेषण याना दिगु ख प्राध्यापक डाक्टर इमरिच सहजीकरण याना दिगु ज्याझो लिपाजोगु नेसलिस ज्याझोले वेकल थिथि देश बोधिकया दिपी जिज्ञासु पिनिगु जिज्ञासा लिस अनव्या दिगु ख थुगु ग्रीष्मकालीन नेपाल भाषा प्रशिक्षण ज्याझो क्यानाडा या टोरन्टो विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म अन्तर्गत विभागे डी रोबर्ट एन एच एन हो फ्यामिली फाउन्डेसन फर बुद्धिस्ट स्टडिज या गुहाली पेद निहोनिसे निशुल्क न्याका वयाचुङ्गु ख तस्कहे बालागु तस्कहे लस्ता होगु बुख चाहिँ निन्द त छिपेन त कन्द त के लागेन जी तस्कहे लेता सागा बेस युगु नेपाल भाषा बनिगो रह्यो झिनेवाते विशेषको सीमित नि तर छिन्तर जना दिलो उल्लिम मछि देश मलाई नेपाली नाप्नाप क्यानाडा अमेरिका आयरल्यान्ड इटली जर्मन जापान फ्रान्स बेलायत हंगेरी भारत धक्कोसी मनो देश निमेसिन बोतिकाल खला धोक्सिया धोको सत्र मोसनोजी एसा थो देउसा झिउ नेपाल भाषा लागि तस्क हे बालागु ज्याख अल्सी पनि त मेगु वाले चाहिँ जित आधुन नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय निवास सम्मेलन जुइते मुदो निवा दे दिया गोसा वो बारे जी मेगु वाले रासा पक्का दुग्यङ्क सिप्ने नप खब्याके आधा साख मम्मी पाख्यो भने त्यहाँ आगो पालेजी कयागु मेख थौचा जी नुग बारे यो कुमे त्यतिनालाई जी खास नुग अधगा सर्चानो यो कुहे मे दुखानी जीगु नुग धागु मे त्यतिना
तुम्हें हालादी मा प्रणेश सक्के वो अनुर मालंधर का तुम्हें अले चौई दी मा अले लेजरादी मा रिकी सक्के अरे तो ऑडियो प्रोडक्शन फिरोज बजराचारी ज्योति रिकॉर्ड्स पाखें जो गुजरो ज्योति रिकॉर्ड्स पाखें है तो अच्छी खनाना दी अपलोड जा सोंगो अरे तो धासा नक्तनी अप्रैल 2026 से अपलोड जोगो खानी उन्हें 25 अप्रैल अप्रैल लास्ट लास्ट है तो रात आके 118,000 मुंडेसा स्वेयर को गुदो ची पिंदर तो मिंगना बाला से चौंसा पकाना यूट्यूब चैनल स्वेयर दिसा प्रणेश साक्के एंड सोजु प्रोडक्शन पाखे अपलोड थो सा ज्योति रिकॉर्ड्स पाखे मुखो प्रणेश साक्के एंड सोजु प्रोडक्शन पाखे साई और दु अच्छी पिसा माले बले साई जीव नुगा रखा माल गिरा सा तुम्हें ठक्के हुए तो ये मिते इतना चेजो नेपाले सा

Le pangu tipa tung ka akno la se kosa jazo Nepali sa Nepali jazo chingi na chona dila ale jivuna kharash mila jazo sa atso so bukhata te le chapun me hake ale lipa sa jivuni go easy ate te na go bukhata nati bajra ya lumanti kavita bachan jo go bukhaka hali newa dabu Nepali muka wa wa livi chosa dabu ya mangka go sale nati bajra wa safu duku lumanti kavita jazo jo go du saniba sa to ki bhone jo go tho jazo hali newa dabu Nepali muka wa ya naya ramis मुनि कार्य सभा नाय सिजुगुखा जाजोले नेपाल भाषा अकादमी या वाइस चान्सलर डाक्टर पुष्पराज राजकर्णिकार मु पाहा कथवा जाय दिगुखा जाजोले हलि नेवा दबु नेपा दे मु कवया फुलामा नाय सुरेन्द्र भक्त श्रेष्ठ अथे केन्द्र नको साक्य सुरेन मु छान्जे दु मु श्रेष्ठ अथे प्रतिभा समाज या नाय डाक्टर बजराज साक्य नाति बसराय जहान प्रमिला बजराचार्य ओ लिवी चोसा दवया लियुकजी सुधीर खोबी लगायत विशेष पाहा कथ उपस्थित जुया दिगुखा ज्याजोले खोपया वरिष्ठ कवि योगेन्द्र प्रधान प्राध्यापक नर्मदेश्वर प्रधान लोक कवि राजभाइ जकमी नारद बज्राचार्य प्रतिव्रत्न साक्य मिलन साक्य पूर्णिमा साक्य व नाति बज्रया मिहा नली बज्राचार्य अले छेपी लिज बज्राचार्य व लिजना बज्राचार्य पिन्सन कविता वाचन हेर्न दिलसा अमेरिका निवासी भाषा होमी केशर मान ताम्रा कार्य कविता नाम बनाइएको छ सांगीतिक प्रस्तुति नन्ह्योगो उगु ज्याजोले जुसुकाजी रञ्जित रेता महर्जन सरिता साई राजु महर्जन लगायत पिन्छ मेहाला दिएको छ ज्याजोले नाति बज्र व सफु दुखो या थिथि पक्ष या तकया मुपा डाक्टर पुष्पराज कर्णिकार अरे संस्कृतिविद डाक्टर चुन्दा बज्राचार्य डाक्टर बज्रराज साक्य साक्य सुरेन व नुद समारोह समिति या नाय प्रेम हिला प्रेम

tal hadal pizza kha tayari ko kha haji dr lipango bukha pakhe bhanetina ther baad buddhist academy pracharya dr sakya lumanti shradhanjali des hatya jo jogudu ther baad buddhist academy pracharya bahu ayamik byaktitva dr mahendra ratna sakya lumanti dharma sangveg purna shradhanjali sabajula academy pracharya lise pragik byaktitva paryatik shikshaya abhiyanta anusandhan karta bauddha sahitya sadak varishtha bauddha vidwan murtikar madhuma dr sakya lumanti असार 23 गते मंगलबार विश्व शान्ति बिहार भुवनेश्वरे थोजाजो जोगुख एकेडेमिया अध्यक्ष बिजु भिक्षु निग्रोथ मास्तवीर्य सभापति दे जोगु धर्म संवेग पूर्ण श्रद्धांजलि सभा मु पहा कथा बिजामा अखिल नेपाल भिक्षु महासंघ अध्यक्ष श्रद्धेय भिक्षु फ्राखो विशाल धम्म शोभन मास्तवीर पाखे पञ्चशील ब्या बिजागु ख पेचु संघ पाखे अनित्य भावना पाठ याना बिजागो जाजोले फुलामा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल विशेष पहा कथा छाया दिगु ख सभाया त सम्बोधन यासे खनाल मधुमा डाक्टर साकिय व्यक्तित्व बौद्ध धर्म याखिले बिया दिगु योगदान लिसे बेकया थिति पक्ष या त कयान नुग ख तया दिगु ख बौद्ध विद्वान डाक्टर अमिता धाखवा मधुमा डाक्टर साकिय जीवनी कना दिगु खसा उगु इले मधुमा डाक्टर साकिय छोया दिगु अवि धर्म चेत सिकया मसिका नया सफया न पित बोझ यागु ख जाजोले लोटस कलेजिया प्राचार्य वीर काजी सक्य अक्षेश्वर कलेजिया प्राचार्य नरेश सक्य बौद्ध विद्वान मदन रत्न मानन्दर विद्यालक्ष्मी वज्राचार्य सुषमा वज्राचार्य व न मधुमा डाक्टर साक्य बारे नुग ख तया दिसे विचाहेका दिगु ख उघे जाजोले एकेडेमिया नुमा प्राचार्य डाक्टर त्री रत्न मानन्दर यात नियुक्त यानगो घोषणा न यागु ख अथे सभाया सभापति भिक्षु निग्रोड मास्तवीर एकेडेमिया पुनाचंगु प्राचार्य डाक्टर मानन्दर यात नियुक्त यानगो घोषणा न ज्यागु खसा पुण्यानुमोदन निपा एकेडेमिया नुमा प्राचार्य डाक्टर मानन्दर यात नियुक्त लिसे पदभार ग्रहण न याको ख यानि मिवाज मेजबी थौयागु लागि थुलिहे जक बुख तेतेन थुलिहे जक इन लात थौया लागि मेउ वाले अझ जिएको खत जनावे अलि नचिन चिन दैते अन्तर्राष्ट्रिय हलि नेवा सम्मेलन जितम गुदु थसाइ नेवा दे दबुया गोसा सोनिगले जि मगो सोनिगले मस तपा कहे जि गन जि गुब्ले जि अलि गजागु जि व कार्य व सम्मेलन या कार्य स्वरूप चाहिँ व बारे जि मेउ वाले डिटेल तेगु जि अदक्ले लिपा तस्क छप पुलांगो मे तर तस्क हे बालागु मे जि तेतेन जुजु काजी रञ्जित यसले थोगु थम मे ज्वेदिम अले लेचना दिम ह हरि बहादुर रञ्जित थमे याना पापा प्राधिक समझने लागि रविन्द्र या त यो कोइको सुबा देसासे जि रश्मि लाना सिक्पे पाखे उजाफने ज्याझो निना दिगुली यो कुसुबा